उनमें भी उन्होंने अपनी आवाज दी। फिलहाल वो गाना जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये गाना बहुत बहुत पसंद आने वाला है। दिल की धड़कनों को संभाल लीजिए।

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ट्ज और 7104 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई महीने की 20 तारीख व दिन है सोमवार। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 मिनट तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पे उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायिका श्रीमती संगीत समूह, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री कामयंग फो और सुखशी शिकारेगा, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंता स्वर्गेरी, मनपा में उद्घोषक श्री थुतन ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका यशी पेमा। हम सभी आकाशवाणी सुन रहे आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में पहले आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मीडिया न्यूज दोपहर 2 बजे तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: आई अपील टू मेंबर्स अक्रॉस ऑल साइड्स ऑफ द हाउस टू अपहोल्ड द डिग्निटी, डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ दिस ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन। व्हाइल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर इंटीग्रल टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर दैट प्रिजर्व्स द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस।
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय

0: मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय

0: संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: मालदीव की पहली राज्य की यात्रा है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मालदीव तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया, वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई तीन मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा

0: की राष्ट्रपति माया सिंधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनिए जगजीत सिंह के स्वर में श्री रामधुन।

श्रोताओं, अभी आपने भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत जगजीत सिंह के स्वर में श्री रामधुन सुना। अब यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए श्री मायने सिदास्ताव, एपी हेम्मा, नेनुम, माइली, बजंता, जिलिन और साथियों द्वारा गाए चंद आका गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही विविंतन का कार्यक्रम प्रदेशी संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है।

0: दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। कार्यक्रम मेरी बात में आज आप सुनिए दोजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के छात्र सुखशी थम्पा लामू से एक वार्ता। वार्ता का विषय है समुदाय विकास में महिलाओं की भूमिका।
1: आकाशवाणी तवांग से कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं थम्पा लामू दोजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग में पांचवी सत्र की छात्र हूँ। आज मैं कार्यक्रम मेरी बात में समुदाय विकास में महिलाओं की भूमिका विषय पर चंद शब्द बोलना चाहूँगी। महिला एक शब्द पर अर्थ अनेक व घर की शांति हो या समाज का बदलाव दोनों का केंद्र है। समुदाय विकास का मतलब है लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना और जब महिलाएं इस प्रक्रिया का हिस्सा बनती है तो विकास की रफ्तार और भी तेज हो जाती है क्योंकि महिला वही शक्ति है जो परिवार को संभालती है और समुदाय को जोड़कर रखने का काम करती है। आज की महिला घर की सीमाओं तक सीमित नहीं व शिक्षा स्वास्थ्य आर्थिक विकास सफाई अभियान परिवार पोषण जैसे हर क्षेत्र में अपना कदम जमा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG ने मजबूत आर्थिक क्रांति लाई है। इन समूह महिलाओं को अपनी कमाई बढ़ाने का अपने व्यवसाय शुरू करने का और अपने परिवार को सशक्त बनाने का साहस दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महिलाओं का योगदान असाधारण है जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा दीदियां और नर्सों ने गांव-गांव जाकर मां बच्चे की स्वास्थ्य को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह सिर्फ सेवा नहीं करते बल्कि जागरूकता भी फैलाती है बच्चों की पोषण से लेकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल तक। शिक्षा के विस्तार में भी महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरे परिवार और समुदाय को शिक्षित करती है। आज अनेक महिला शिक्षिकायन और समाज सेवी लड़कियों को स्कूल जाने सपने देखने और आगे बढ़ने का हौसला दे रही है। पंचायती राज में महिलाओं की 33% से भी अधिक भागीदारी ने गांव की निर्णय प्रक्रिया को एक नई दिशा दी है। आज गांव की सरपंच बहने पानी सड़क सफाई और शिक्षा से जुड़े निर्णय बड़े आत्मविश्वास से ले रही है। श्रोता, महिलाओं के बिना समुदाय विकास की कल्पना अधूरी है। उनका दृष्टिकोण अलग है, उनका धैर्य अलग है और उनकी संवेदना अलग है। ये तीनों मिलकर समुदाय को मजबूती समानता और एकता देते हैं। अंत में जहाँ पर महिला विकसित है समुदाय विकसित है और जहाँ समुदाय विकसित है वहाँ देश समृद्ध होता है। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आपने दैनिक कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत दोजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग की छात्र सुखशी थम्पा लामू से एक वार्ता सुना। वार्ता का विषय था समुदाय विकास में महिलाओं की भूमिका।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
2: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:35 होने वाले है। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है महिला पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत आइए सुनते हैं। गुरप्रीत सैनी के गीत पर फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से। इस गीत को गाया है दर्शन रवल और रोचक कोहली ने।

अमित त्रिवेदी के संगीत पर श्रोता आपने फिल्म केदारनाथ से देव नेगी की आवाज में गीत का आनंद लिया। आइए कार्यक्रम को यहीं जारी रखते हुए सुनते हैं फिल्म आई हेट लव स्टोरी से श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाजों में कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत के रचयिता कुमार तथा संगीत

श्रोता, अभी आपने राम संपत के संगीत पर फिल्म लापता लेडी सरती सिंह की आवाज में गीत सुना। इसी गीत के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत अभी ही पर समाप्त हुआ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओ, पेश है आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत आइए सुनते हैं। अ जेंटलमैन फिल्म से विशाल ददलानी और जनिता गांधी की आवाजों में। इस गीत के रचयिता वायु तथा संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनते हैं। आशिकी 2 फिल्म से पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की आवाजों में इस गीत को बोल दिए है इशात कामिल ने तथा संगीत से संवारा है चीत गंगुली ने।

ब्रेक के बाद फिल्म से श्रोताओं में आपने विशाल दलदानी और अलिसा मेंडोसा की आवाजों में एक गीत सुना। गीतकार प्रसून जोशी तथा संगीत दिया था विशाल शेखर ने। कार्यक्रम को यूं जारी रखते हुए आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत मिथुन के संगीत पर फिल्म एक विलेन से अरिजीत सिंह की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप हमें आनंद दे रहे हैं आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी में।

सचिन जिगर के संगीत पर श्रोताव्य आपने फिल्म अ जेंटलमैन से एक गीत सुना। इस गीत के गायक थे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म दे दे प्यार दे से अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत के रचयिता है कुमार तथा संगीत है रोचक कोली ने।

शहजादा फिल्म से शोधा भी आपने शाहस्वात सिंह और शर्मली खोलगाड़े की आवाज में गीत सुना। इस गीत के रचयिता शर्लोक लाल तथा संगीतकार थे प्रीतम। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, अक्टूबर फिल्म से अरमान मलिक के आवाज में। गीत का अभिरुदी चंद तथा संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

गुरप्रीत सैनी के गीत पर श्रोताबिया आपने फिल्म धड़क टूट से दर्शन रबल जुनीता गांधी और रोचक कोहली की आवाजों में एक गीत सुना। इसी गीत के साथ ही आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कार्यक्रम राग रंग में आज आप सुनिए उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के स्वर में हमसत्वनी राग।

ரே சரே நேரி கபனிதா. श्रोताओं, अभी आपने शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के स्वर में हमसितवानी राग सुना. अब यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ. ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. समय शाम के 4:45 होने वाले हैं. हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिन्दी एवं अंग्रेजी में समाचार. कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें.

अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने गुवाहाटी में आयोजित फ्रॉम ट्रेडिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटिंग भारतीय इतिहास एंड भारतीय ज्ञान परंपरा इन मॉडर्न गवर्नेंस विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा ऐतिह्य अन्वेषण 5.28 में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना ने आज सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग तथा अमर चित्र कथा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसका उद्देश्य राज्य के गुमनाम नायकों की प्रेरित गाथाओं का संरक्षण उन्हें भावी पीढ़ी तक पहुंचाना है। अरुणाचल प्रदेश के किक बॉक्सर सोनम जोम्बा ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित कर्मा फाइट लीग के FL8 में शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व ट्रोवेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम किया। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश बना। और इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। अब

0: समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा को आज के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2:30 बजे पांचवीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को अगले आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को लेकर कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज सदन में नीट मुद्दे पर 6 बार स्थगन हुआ। राज्यसभा में कार्यवाही सुबह 11 बजे नव निर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुई। बाद में सदन ने अपने पूर्व सदस्यों बलबीर के पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगसाय रामकृष्ण और एच हनुमान थप्पा को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका अंतर सत्र के दौरान निधन हो गया था। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफ असनानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उन्होंने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफाल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से।
0: केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा है कि महज एक महीने में देश की अनेक उपलब्धियां हासिल की है जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने गुवाहाटी में आयोजित फ्रॉम ट्रेडिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटिंग भारतीय इतिहास एंड भारतीय ज्ञान परंपरा इन मॉडर्न गवर्नेंस विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा एतिहाज अन्वेषण 5.28 में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा है कि यह संगोष्ठी देवव्यास, महर्षि वाल्मीकि, चाणक्य, आर्यभट्ट, सुश्रुत, पतंजलि, सम्राट अशोक आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देव जी, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल तथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे महान चिंतकों और राष्ट्र निर्माताओं की ज्ञान परंपरा से पुनः जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि शासन, विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा, आध्यात्मिकता और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में उनकी योगदान आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन भारतीय इतिहास संकलन समिति असम तथा अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली द्वारा किया गया। शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने आज सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग तथा अमर चित्रकथा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के गुमनाम नायकों की प्रेरक गाथाओं का संरक्षण और उन्हें भावी पीढ़ी तक पहुंचाना था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री

0: सपना ने लिखा कि बैठक में राज्य के इन गुमनाम नायकों के जीवन पर आधारित आकर्षक कॉमिक पुस्तकों एवं 2D एनिमेटेड शिक्षक सामग्री विकसित करने की संभावना पर चर्चा हुई ताकि उनकी कहानियों को युवा पाठकों तक अधिक प्रभावी और प्रेरक रूप में पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि इन प्रकाशनों को कक्षा से 10 तक विद्यार्थियों के लिए पूरक अध्ययन सामग्री के रूप में शामिल करने पर भी विचार विमर्श किया गया है। इनका प्रकाशन अंग्रेजी, हिंदी तथा चयनित जनजाति भाषाओं में किए जाने की योजना है ताकि इनकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। अरुणाचल प्रदेश की किकबॉक्सर सोनम जोम्बा ने श्रीलंका में कोलंबो में आयोजित कर्मा फाइट लीग के FL8 में शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व स्ट्रॉवेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एवं उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने इस उपलब्धि पर सोनम जोम्बा को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको चिशिनाउ स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू को मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार करना है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों देश के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अब खेल जगत के खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: अमेरिका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे हैं, जिसके कारण होर्मुज जलदमरु मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान को नए हमलों की सूचना दी है। अमेरिका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों में ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया गया। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। सेना, राष्ट्र और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: This is Akash Vani, the news read by Priya Badu. The monsoon session of Parliament began today. When the Lok Sabha met at 11 a.m, the House paid tributes to 6 of its former members who passed away recently. They were Nadenla Bhaskar Rao, Omwati Devi, Sudhanshu Seal, Major General Bhuvan Chandra Khanduri retired, K.P. Dhanpalan and Pyarelal Shankar. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Lok Sabha Speaker Om Birla said that Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani played a significant role in fostering India-Qatar relations. Mr. Birla said Father Amir of Qatar served as the Amir of Qatar for 18 years and laid the foundation of modern Qatar. Prime Minister Narendra Modi has said that be it the monsoon or the monsoon session, if both are proactive, they prove to be highly productive. Speaking to the media before beginning of the monsoon session of Parliament, he said, when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living beings. Mr. Modi said it is a powerful message that the potential and aspirations of the country's youth are as boundless as space itself. He said in just 1 month, the nation has achieved new

स्थिर, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित ढांचे को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नव निर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: office to hold talks with the government, and the discussions have been ongoing since 11:50 a.m. this morning. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation, and they submitted a written petition to the government around 4 p.m. Mr. Nadda urged all the protesters to end their sit-in and assist the administration in restoring normalcy. The Delhi police has appealed to all the protesters in New Delhi to maintain peace, exercise restraint and cooperate with the police in ensuring peace and public order. In a video message, Additional Commissioner and Public Relations Officer of Delhi Police, Rajiv Ranjan, urged the participants to conduct themselves peacefully, refrain from indulging in any unlawful or violent activities. In Jammu and Kashmir, four more people lost their lives in drain-related incidents across Jammu Division today, taking the death toll to 16 over the past 2 days. In Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor Manoj Sinha reviewed the situation following heavy rains, flash floods and landslides in several districts of the Union Territory. Akashwani correspondent reports that the LGE spoke with the senior officials and directed for swift relief and infrastructure restoration in the affected areas. And in the United Kingdom, Andy Burnham, the newly elected leader of the Labour Party, has taken charge as the country's new Prime Minister. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। इसमें आज आप सुनिए जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी श्रीमती गेंदिन सोमू के साथ हुए एक भेंटवार्ता। विषय है मॉनसून के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचाव हेतु क्या करे और क्या ना करे। इनसे भेंट करता है सुक्षी दोजीडेमा।
2: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग तवांग के डीजीएमओ यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट तवांग श्रीमती गेंदन सोमू जी। सबसे पहले गेंदन सोमू जी, आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच।
2: तो गेंदन सोमू जी, आज हमारे इस चर्चा के विषय है नेचुरल कैलोमिटीज यानी प्राकृतिक आपदाएं। वैसे प्राकृतिक आपदाएं तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे तवांग में बरसात के मौसम में ज्यादातर प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस कार्यक्रम के जरिए आपसे प्राकृतिक आपदाएं से बचाव के लिए छोटी छोटी जानकारियां प्राप्त करूं और अपने श्रोताओं के साथ साझा करूं। तो सबसे पहले गेंदन सोमू जी, आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि प्राकृतिक आपदा होते क्या है और इसमें क्या क्या आते हैं।
3: सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मौका दिया रूबरू होने के लिए तवांग के वासियों से। तो नेचुरल कैलोमिटीज में आपका सबसे पहले अभी मॉनसून चल रहा है, तो आप देखिए इसमें फ्लैश फ्लड होता है, लैंडस्लाइड होता है, लाइटनिंग एंड थंडर स्ट्रॉम होते हैं, और फिर विंटर जैसे आते हैं तो आपका फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, वाइल्ड फायर, देखिए पूरा जंगल में आग लग जाना, ये सब हमारे नेचुरल कैलोमिटीज में।
2: जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत लैंडस्लाइड होना, लाइटनिंग्स होना, थंडर स्टॉर्म्स होना या फिर सर्दी के मौसम में फायर एक्सीडेंट्स होना, ये सब आते हैं। तो अभी मॉनसून सीजन है, बरसात के मौसम है, तो हम अभी के जो स्थिति है इस पर ज्यादा ध्यान देते हुए हमारे इस चर्चे को आगे बढ़ाएंगे। लोग बरसात के मौसम है कहकर अपने काम छोड़कर घर पर बैठे भी नहीं रह सकते हैं, तो उन्हें बाहर जाकर काम करने के लिए जो नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होते हैं, इससे बचाव के लिए डूज एंड डोंट्स यानी उस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि अगर किसी को ऐसा स्थिति से गुजरना पड़े तो उस समय अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
3: इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट से टाइम टू टाइम एडवाइजरी जारी किया जाता है। ये हो सके तो आपका लैंडस्लाइड जोन है, नालाज है जी, और या फिर हमारे सिंकिंग जोन्स है, क्वारी साइड है, ये सब हमारे वल्नरेबल्स हैं जिसमें आपको अवॉइड करना चाहिए। इसमें जाना जितना हो सकता है आप अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बारिश के दौरान देखिए जैसे जमीन हमारा गीला रहता है, जहां पे पेड़ का कटाव ज्यादा होता है तो वहां पे आपका वल्नरेबल ज्यादा होता है, लैंडस्लाइड ज्यादा होता है, जिसके कारण जैसे पेड़ कटने की वजह से आपका क्या होता है, फ्लैश फ्लड आते हैं। तो फ्लैश

0: बट इसलिए आते क्योंकि आपने पेड़ काट दिया एंड देन उनका जड़ जो काम करना छोड़ देता है, तब जाके आपका डेब्रिस पूरा लेके आते हैं, हमारा फ्लैश फ्लड बोलते हैं। तो ये सब एरियाज है जिसको आप अवॉइड करना है ड्यूरिंग मानसून। और शायद ज्यादातर यहाँ पे तो नाला या फिर बड़ा बड़ा ये रिवर्स हमारे यहाँ पे नहीं है, अगर हो सके तो उस समय इसमें भी हम लोगों को जाना नहीं चाहिए। फिशिंग होगा आपके मछली पकड़ना या फिर आपका नहाना या फिर पिकनिक, इस समय इस दौरान आप जितनी हो सके इसको आप अवॉइड कीजिए। एसेंशियल कॉमोडिटीज जो होते हैं, देखिए राशन आपका ड्राई जो जो हम रख सकते हैं, जो स्टॉक में हम लोग रख सकते हैं, मैं हर घर से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा एसेंशियल कॉमोडिटीज को आप स्टॉक में रखिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे तवांग आना मीन्स आप एक रास्ता से होना है, तो इसमें हम लोगों का राशन अपना घर में होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपका बारिश बहुत ज्यादा होता है तो जैसे बिजली हमारी चली जाती है, तो हो सके तो अपना मोबाइल आप चार्ज रखिए, या फिर आप पहले तो हम बहुत टॉर्च लाइट वगैरह रखते थे, पता नहीं आजकल रखते ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि टॉर्च लाइट भी हम रखें घर पे, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ड्यूरिंग मॉनसून। और हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि क्वारी बहुत ज्यादा है जिसमें तो निचला स्तर से हम पत्थर तो निकलते जाते हैं, अगर ऊपर स्तर को हमने इग्नोर कर दिया तो वहां से लैंडस्लाइड होने का बहुत चांसेस है। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस दौरान कुछ कुछ जगह है जैसे आपका क्वारी साइड हो गया, नालाज हो गया, तो इस सब को आप थोड़ा सा अवॉइड। तो ये रहा आपका मॉनसून के दौरान जो एडवाइजरी होता है। फिर आपने पूछा कि मुझे लाइटनिंग और थंडरिंग के ऊपर में इसमें आपका जितना हो सके प्रिक्वेशंस में ये है कि हम लोगों का एक मेंटेलिटी है, लोगों का एक मेंटेलिटी है कि अगर लाइटनिंग होता है या फिर थंडरिंग होता है तो बड़ा बड़ा पेड़ के सामने जाके हम रुक जाते हैं, मतलब शेल्टर हम वहां पे लेते हैं, तो वो हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि लाइटनिंग और थंडरिंग जो होता है वो हम लोगों को सबसे ऊंचा चीज में, सबसे जो टॉलेस्ट होता है उसमें अट्रैक्ट करते हैं, तो उस वजह से हम इंसान को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचते हैं। अभी खेती का सीजन भी है तो खेती में भी बहुत सारा हमारा लोग रहते हैं, तो उनसे मेरा एक गुजारिश है कि खाली पांव जो हम लोग खाली पांव जो जमीन पे काम करते हैं ना वो ना करें, हो सकेगा तो प्लास्टिक का गम्बूट जैसे हम लोग कहते हैं तो उसको आप पहन के ही काम कीजिए, ताकि आपको जो ये करंट है वो आपके बॉडी पर असर ना करे। तो हो सकेगा तो कुछ भी आप नेचुरल कैलिमिटी को देख लीजिए, तो हम लोगों को वार्निंग्स मिलता है, जैसे आपका थंडर स्टॉर्म आना है तो आपको हल्का सा लाइटनिंग आपका पहले होगा तो कुछ हाँ जी तो उस बीच में आप हो सकेगा तो आप सेफ प्लेस में चले जाइए। अगर आप फील्ड में ही है और बिल्कुल आप यहाँ से वहां कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करना है कि आपका सर को दोनों टांगों के बीच, दोनों पांव के बीच में जितना हो सके नीचे झुक के, मीन्स अपने आप को बॉल साइज में बोलते हैं एक्सपर्ट्स जो बताते हैं, तो बॉल साइज में अपने आप को करके जितना हो सके नीचे झुक जाना चाहिए, ताकि जो लाइटनिंग होगा, लाइटनिंग का भी एक करंट पास होता है, तो वो आपको इफेक्ट ना करे, तो ऐसा बोला जाता है। तो मैं लोगों से वही गुजारिश करूंगी कि इस तरह का प्रिक्वेशंस जो टाइम टू टाइम हम बताते हैं तो उसको अमल करें। और एक है जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जैसे हम बहुत चीप वाला भी यूज कर लेते हैं ना, तो पैसा बचाने के लिए, तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ अच्छा चीज जो ISI मार्क वाला यूज करें। और इनकेस थंडरिंग या फिर स्टॉर्म जैसे हमारा लाइटनिंग होता है, तो उस समय में क्या करना चाहिए आपको, लोगों को सब मेन प्लग्स जो बोलते हैं ये जो तार जो हमारा लगा हुआ होता है, तो उन सबको निकाल देना चाहिए। अगर उस समय आप एक एक चीज को आप निकाल नहीं पाते हैं, तो आपका घर में एक मेन स्विच होता है जो आप पूरा फैमिली मेंबर्स को बताइए कि ये मेन स्विच है, तो मेन स्विच को आप ऑफ कर देने से भी आपका बहुत सारा जान माल का नुकसान कम हो जाएगा।
1: जी आजकल लोग इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि घर के सारे काम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जरिए करते हैं, तो इससे कई सारे फायदे भी हैं, लेकिन साथ साथ कई सारे खतरे भी जुड़े होते हैं। तो जैसा कि अभी आपने बताया, अगर जब भी लाइटनिंग होते हैं तो आप एक एक पॉइंट से प्लग ऑफ करने से बेहतर सीधे जाकर जहां मेन स्विच होते हैं वहां से ऑफ कर दें।
0: जी, जैसे कि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा ये आपका मोबाइल्स यूज करते हैं ना, जो लाइटनिंग और थंडरिंग के समय में मोबाइल्स को आप अवॉइड कीजिए। और बच्चे आजकल ज्यादातर क्या करते हैं कि आपका ईयरफोन बहुत यूज करते हैं, ईयरफोन यूज करते हैं, या फिर वायर वाला ईयरफोन होगा या फिर वायरलेस वाला ईयरफोन। हाँ जी, तो ये ईयरफोन्स आपका थंडरिंग और लाइटनिंग के दौरान बहुत ज्यादा खतरा होता है, जिससे हमारे जान भी जा सकता है। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने बच्चों को जब भी लाइटनिंग होता है तो ये मोबाइल्स हो गया आपका या फिर ईयरफोन्स हो गया, उसको अवॉइड करने के लिए सलाह देते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, जैसा कि अभी आपने सुना, प्राकृतिक आपदा के दौरान अगर आप कहीं जगह पे फंस जाते

0: हैं और आपके पास कोई और चारा नहीं होते हैं, तो उस समय आपको अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे डीजे मोतवांग केंदन समूह जी ने आपको बताया और हम आशा करते हैं आप सब इससे पालन भी करेंगे। तो गेंदन समूह जी, हमारे इस चर्चे को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे और भी एक चीज जानना चाहेंगे कि आप तवांग में पोस्टिंग आने से पहले आप ईस्ट सियांग पासीघाट में पोस्टेड थे, तो अभी तक आपके पास हमारे तवांग के लोग प्राकृतिक आपदा से हुए कौन सी घटनाओं को लेकर आए हैं और अगर कोई आते हैं तो आप उनके लिए क्या करते हैं?
1: हाँ जी, लैंडस्लाइड का थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, लैंडस्लाइड को लेके, उस प्रॉब्लम को लेके हमारे पास आते हैं। और आपका यहाँ पे गाय, हमारे बहुत सारा लोग पालते हैं तो गाय जो एपिडेमिक होके जो गुजर जाते हैं उसका रिलीफ हम यहाँ पे देते हैं। और दूसरा जैसे आपका क्रॉप डैमेजेस हो गया, जैसे मैं इस सियांग में थी तो वहाँ पे क्रॉप डैमेजेस बहुत ज्यादा होते हैं और अभी मानसून के सीजन में तो वहाँ पे आपका क्रॉप डैमेज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। प्लस वहाँ पे बहुत छोटा छोटा नाला जो है अभी जो मानसून में बहुत बड़ा नदी बन गया था। आपने सुना भी होगा कि वहाँ पे एक बहुत फेमस रिवर है जो सियांग, तो सियांग जो इस समय फुल स्पीड में होते हैं, बहुत ज्यादा उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आपका पानी जो छोटा छोटा जो नाला थे वो इतना बढ़ जाता है कि पानी एक जगह पे आके रुक जाता है, इनअंडेटेड हो जाता है, तो घर पूरा डूबा वहां पे रहता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम तवांग में खुश नसीब है जो हमारे यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है।
0: जी जी, जब आपसे प्राकृतिक आपदाएं से जुड़े ही बातें हो रही है तो आपसे और एक सवाल करना चाहूंगी, जैसे यहाँ के घरों के आसपास हर जगह अभी के समय में लैंडस्लाइड आने की ही संभावना है, या फिर ज्यादा बरसात होने के कारण इलेक्ट्रिक पोल्स गिर सकते हैं, या फिर किसी के साथ ऐसी घटना अगर रात को घटती है तो वे तुरंत अगर सरकार की मदद लेना चाहेंगे तो किससे हम संपर्क कर सकते हैं, आपसे यानी डीडीएम मोतवांग से या फिर अन्य कौन सी विभाग से हम संपर्क कर सकते हैं?
1: हाँ जी, सबसे पहले तो इसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं मैं डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर हूँ, तो बिल्कुल आप संकोच ना करें, मेरे फोन पे एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद तुरंत जिसको कौन सा विभाग का है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो एनी टाइम डे और नाइट, रात हो या दिन हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा असिस्टेंस आप लोग ले सकते हैं।
0: जी,
1: तो मैं अपना फोन नंबर भी मैं दे देती हूँ।
0: जी जी,
1: तो मेरा नंबर है 9436053326। और कोई नेचुरल कैलामिटी होता है तो आप किसी से भी संपर्क करने में संकोच ना करें, आप डीसी साहब को डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, एसपी साहब को कर सकते हैं, हमारे एडीसीज को कर सकते हैं, सभी जो आपका सर्कल ऑफिसर्स हैं उनको भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं।
0: जी हाँ, और देखिए अभी के समय में तो फायर एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं समर सीजन में तो, लेकिन सर्दी के मौसम में कुछ जगहों पे कई लोग जंगल जला देते हैं या फिर खेत को जला देते हैं, तो उस समय किसी के साथ एक्सीडेंटली किसी के घर जल जाते हैं तो किसी के फसल जल जाते हैं, या फिर समर सीजन में भी इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से किसी के घर जल जाते हैं, तो उनके लिए आपके डिपार्टमेंट द्वारा क्या करते हैं?
1: हाँ जी, जैसे ये फायर एक्सीडेंट होता है तो उसमें एक घर जल जाने पे हमारे नॉर्म्स के मुताबिक 1,00,000 का आपको असिस्टेंस दिया जाएगा, हम कंपनसेट नहीं करते हैं, हम रिलीफ देते हैं, तो उसमें आपका ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्री में काम करते हैं, पोस्ट को हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, इसलिए हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह बहुत देते हैं जिसमें लोगों को अमल करना चाहिए एक्चुअली, तभी जाके आपका जान माल का नुकसान कम होगा। और आपने बोला कि जैसे झूम खेती के लिए हमारा जंगल जो जला देते हैं, वो अभी आपका गवर्नमेंट का रूल्स के मुताबिक भी ये आपका क्राइम है, आपको नहीं करना चाहिए। खेती भी करता हो तो कुछ एरियाज को आप वाइल्ड फायर जिसको बोलते हैं हम लोग, ऐसा हो जाता है, तो जितना हो सकता है उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे एटमॉस्फेयर को भी बहुत सारा नुकसान होता है, इन्वायरमेंटल लॉसेस बहुत ज्यादा होता है, जैसे आप देखिए उसमें बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा है तो वो सब, हाँ जी, तो जानवर्स को बहुत तकलीफ होता है। तो मैंने एक बार देखा भी था कि एक जैसे बच्चे लोग भी उसके चपेट में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो इस सब का हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो देखिए आपका कुछ भी एडवाइजरी, हर किसी के पास में आपका मोबाइल होता है, सोशल नेटवर्क आजकल इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आप डूज एंड डोंट्स कहीं भी कोई सा भी आप साइट में आप जाके ढूंढ लीजिए, आपको डूज एंड डोंट्स कोई सा भी डिजास्टर के ऊपर में आपको मिल जाता है। तो लोगों से मैं गुजारिश करूंगी कि कभी डूज एंड डोंट्स को भी आप पढ़ लीजिए, जो आपका हित के लिए जो होते हैं उसका आप फायदा जरूर उठाइए। मैंने ये देखा है कि फायर एक्सीडेंट किस वजह से होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बुद्धिस्ट ज्यादा है तो यहाँ पे हम जो ट्रिम जो जलाते हैं तो उसको जला के हम, क्योंकि हर समय हम नहीं रह पाते हैं तो हम लोग निकल के चले जाते हैं, तो उस केयरलेस की वजह से भी हमारा फायर एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें घर

0: चल जाते हैं
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: मैं लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि इस पे थोड़ा सा ध्यान देना कि लाइक आप छेन जलाते भी हैं तो उस एक प्लेट में हल्का सा पानी डाल के रखे और बच्चों को ये आपका मैच बॉक्सेस जो आप माचिस के डिब्बा जिसको बोलते हैं ना माचिस या फिर लाइटर ये सब बिल्कुल खेलने के लिए ना दें, जिस वजह से बच्चों को तो पता नहीं होता कि वो खेलते हैं एंड देन आपका आग लग जाता है जिस वजह से भी हमारा फायर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है।
1: जी जी बिल्कुल सही कही है आपने। और देखिए हर साल एनडीआरएफ ईटानगर से एक्सपर्ट्स आते हैं और जगह जगह पर जाकर लोगों को अवेयरनेस देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं और कुछ डेमोन्स्ट्रेट दिखाते हैं। हमने भी देखे हैं जब भूकंप आते हैं तो हमें अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो फिर भी आज मैं इस कार्यक्रम के जरिए आपसे भी इससे जुड़े जानकारियां लेकर अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ जी, लाइक आपको पता है कि पूरा अरुणाचल भूकंप के जोन में आते हैं, जोन 5 में आते हैं। तो जोन 5 मीन सबसे ज्यादा रिस्की वाला, तो इसमें अर्थक्वेक में तो सबसे इम्पोर्टेंट है हायर बिल्डिंग्स में आपको नहीं होना चाहिए। अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा स्टोरी का आपको बिल्डिंग्स डेवलप हो रहा है तो वो सब अर्थक्वेक के बहुत ज्यादा खतरा है। तो मैं लोगों से भी यही गुजारिश करूंगी कि जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो थोड़ा सा ये आप इंजीनियर से एडवाइजरी ले लीजिए कि किस तरह का बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए जो आपके इनकेस, क्योंकि अर्थक्वेक को हम नहीं रुका सकते हैं। अर्थक्वेक, हाँ अर्थक्वेक तो होना ही है कभी ना कभी दिन, तो उसको हम नहीं रुका सकते हैं लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लोग ले सकते हैं। तो आप जब बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप उसमें कुछ प्रिकॉशनरी लेना है तो आप एनी डिपार्टमेंट को, जैसे वॉकिंग डिपार्टमेंट है आपका, PWD है, तो उनका इंजीनियर से आप सलाह लें कि किस तरह का स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे होना चाहिए। प्लस हमारे यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो उसमें अर्थिंग बहुत जरूरी होता है। अर्थिंग तो न्यू बिल्डिंग्स में अर्थिंग शायद कैपेसिटी के मुताबिक शायद नहीं भी देते हैं क्योंकि हम लेमैन हम लोगों को पता नहीं है कि किस तरह का क्या होना चाहिए। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि जब भी आप बिल्डिंग बनाते हैं तो इंजीनियर्स का हेल्प जरूर लें और इनकेस आप अर्थक्वेक के दौरान अर्थक्वेक में आप फंस जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको शांत रहना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे ही हम घबरा जाते हैं तो नुकसान हमें ज्यादा पहुंचता है। अगर घर के अंदर आप हैं तो एक्सपर्ट ऐसे बताते हैं कि आप ये जो आपका बिल्डिंग्स का कॉर्नर में आप जाके जहाँ पे आपका पिलर्स रहता है वो सबसे ज्यादा सेफ होता है। लेकिन बच्चों को जब हम सिखाते हैं अगर वो स्कूल में होते हैं तो उसको डक कवर एंड होल्ड बोला जाता है। डक कवर एंड होल्ड मीन्स यू हैव टू डक योरसेल्फ डाउन, उसके बाद में अपने आप को दोनों हाथों से आपका सर को पकड़ लेना है एंड देन टेबल जो उनका डेस्क रहता है तो उसका नीचे घुस के आपको खुद को बचाना है क्योंकि ऊपर से जो आपका सीलिंग से या फिर कुछ भी वॉल आपका गिरेगा तो आपका सर को नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह का ट्रेनिंग हमारे एनडीआरएफ या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट टाइम टू टाइम देते हैं। लोगों को भी पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, जस्ट दिमाग से थोड़ा समय के लिए निकल जाता है तब हम लोग हैं उसको याद दिलाने के लिए। और जैसे आपने कहा एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ भी है जिसमें, हाँ एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जिसको कहा जाता है, अभी हमारे यहाँ पे स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स भी है। हाँ इसमें अभी मैन पावर कम है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स में आपका मैन पावर कम है, फिर भी जब भी उनका सहयोग हमें लगता है तो हम उसे कॉल करते हैं तो सबसे पहले वो आते हैं। जब उनके पास इक्विपमेंट्स कम पड़ जाता है या फिर उनसे जब किसी को बचाव करना हो तो उस समय नहीं हो पाते तब हम लोग एनडीआरएफ को बोलते हैं तो एनडीआरएफ आके तब हमें सहयोग देते हैं। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीआरएफ एसडीआरएफ का प्री रोल बहुत ज्यादा होता है। प्री मीन्स एनी डिजास्टर से पहले ना, तो उसमें हम लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग जिसमें ट्रेनिंग बहुत दिया जाता है तो लोगों को ट्रेनिंग जब भी है बोलते हैं तो आना जरूरी है, आप पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है
1: जी, और डेमोन्स्ट्रेट भी दिखाते
0: हैं। जी हाँ जी,
1: उसको भी देखना बहुत जरूरी है और समझना।
0: हाँ जी
1: जी। तो गिनन से मुझे आज आपने अपनी कीमती समय निकलकर हमारे स्टूडियो आए और हमारे श्रोताओं को प्राकृतिक आपदाएं से बचाव के लिए बहुत सारे जानकारियां दिए हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू वेरी मच।
2: श्रोता अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी श्रीमती गिनन समूह के साथ हुए एक भेंटवार्ता। विषय था मानसून के दौरान किसी भी आपदा घटना से बचाव हेतु क्या करें और क्या ना करें। इनसे भेंट करता थे सुखशी दोजिरेमा।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:30 होने वाले हैं। लीजिएगा अब पेश है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म मोहरा से उदित नारायण और अलक याग्निक की आवाजों में। इस गीत के रचयिता है आनंद बख्शी तथा संगीत दिया है विजय शाह ने।

श्रोता, अभी आपने फिल्म हमारा दिल आपके पास है से अलका याग्निक और कुमार सानू के आवाज में एक गीत सुना। गीतकार जावेद अख्तर तथा संगीत दिया था राजीव राठौर ने। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, समीर की रचे बोल पर फिल्म शीन से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मालदीव के राष्ट्रपति म्यामा सांडू ने आज व्यापार एवं निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, AI तथा नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की। चिसिनाओ में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति मुर्मू ने अपनी यात्रा को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है और कहा है कि मालदोवा गणराज्य की किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा है। दोनों नेताओं ने व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने, मजबूत एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास तथा दोनों देशों के कारोबारी समुदायों के बीच निकट सहयोग को प्रोत्साहित करने पर भी सहमति जताई। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते दिन भर कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन ने हाल ही में दिवंगत हुए अपने 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उन्होंने भारत कतर संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT परनायक रिटायर्ड ने गुवाहाटी में आयोजित फ्रॉम ट्रेडिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटिंग भारतीय इतिहास एंड भारतीय ज्ञान परंपरा इन मॉडर्न गवर्नेंस विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा ऐतिह्य अनवेशन 5128 में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा है कि यह संगोष्ठी देवव्यास, महर्षि वाल्मीकि, चाणक्य, आर्यभट्ट, सुश्रुत, पतंजलि, सम्राट अशोक आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देव जी, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल तथा भीमराव अंबेडकर जैसे महान चिंतकों और राष्ट्र निर्माताओं के ज्ञान परंपरा से पुनः जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा है कि शासन, विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा, आध्यात्मिकता और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में उनके योगदान आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन भारतीय इतिहास संकलन समिति असम तथा अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली द्वारा किया गया था। शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने आज सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग तथा अमर चित्र कथा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में गुमनाम नायकों के प्रेरक गाथाओं को संरक्षण कर उन्हें भावी पीढ़ी तक पहुंचाना था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मैन ने लिखा है कि बैठक में राज्य के इन गुमनाम नायकों के जीवन पर आधारित आकर्षक कॉमिक पुस्तकों और 2D एनिमेटेड शैक्षिक सामग्री विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई, ताकि उनकी कहानियों को युवा पाठकों और अधिक प्रभावी तरीके से प्रेरक रूप में पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया है कि इन प्रकाशनों को कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए पूरक अध्ययन सामग्री के रूप में शामिल करने पर भी विचार विमर्श किया गया। इनका प्रकाशन अंग्रेजी, हिंदी तथा चयनित जनजातीय भाषाओं में किए जाने की योजना है, ताकि इन व्यापक पुस्तकों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। लेपारादा उपायुक्त हिमानी मीना ने आज जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय निगरानी समिति DLMC की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान जारी कार्यों, हाल ही में पूर्ण हुए परियोजनाओं तथा नव स्वीकृत पहलों की स्थिति का व्यापक आकलन भी किया गया। बैठक में जिले में चल रही विकासात्मक गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक समग्र मंच प्रदान किया। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों लोअर सुबनसिरी, कमलेश, योमी, लोअर दिवांग वैली, तिरप और लोंगडिंग को छोड़

आपने कार्यक्रम देशभक्ति गीत में फिल्म शाबास मिठू से एक देशभक्ति गीत सुना। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए श्रोता पेशे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। तो आए श्रोता कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं। आपकी कसम फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को बोल दिए है आनंद बख्शी ने तथा संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने। गीत की फरमाइश की है भावी निमगांव से श्रीराम गोंधाली, उषा गोंधाली और कोपरगांव से सुरेश मलोदी और वर्षा मलोदी ने।

आनंद बख्शी के पोल पर आए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में दो रास्ते फिल्म से। इस गीत की फरमाइश किए हैं मेरठ कौन से, दिग्दर्शन गौर, कविता गौर और निमादाबाद जिन हरियाणा से, जसवीर सिंह अरोरा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ने।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश की है पैगंग लहू गांव से पेमाताशी मिम करके छिन तीन दबा और नाकुने इनकी फरमाइश का गीत है फिल्म अवतार से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीतकार आनंद बख्शी तथा संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ओपिनय के संगीत पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कश्मीर की कली से मोहम्मद रफी के आवाज में। इस गीत की फरमाइश की है उर्गिलिंग विकास नगर तवांग से संगीत प्रेमी लुफसांग तिंदा ने।

हसरत जयपुरी के गीत पर श्रोताए अब सुनते हैं कार्यक्रम में अंतिम फरमाइश का गीत फिल्म दो जासूस से। इस गीत के गायक है लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह। गीत की फरमाइश की है मुक्तोगांव से त्रिंग दोरजी, पेमा दोरजी, मोनकी, दवा, ग्रीमा और

मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किया आप सभी की वसा फिल्माशु पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस शुरू की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक वसा जरूर करें।

ना भूलें ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादोबारा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्में गीत यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पोर्ट्स स्केल रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार सेंटर।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो जहां आज हमारे साथ होगा फुटबॉल का जुनून, फीफा का समापन और क्रिकेट के मैदान पर भारत ने क्या पाया और क्या खोया। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का विजेता बना, फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। स्पेन के मिडफील्डर रॉड्री को फीफा विश्व कप की गोल्डन बॉल और फ्रांस के किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला। इंग्लैंड ने भारत को तीसरे एक दिवसीय मैच में 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन आज से चीन में शुरू। मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। और पीवी सिंधु कल से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करती दिखेंगी। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं फीफा के साथ, जिसका शानदार समापन कर न्यू जर्सी स्टेडियम में हो गया है एक शानदार और रोमांचक फाइनल मुकाबले के साथ। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का विजेता बन गया है। विश्व कप के फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। स्पेन के लिए सब्स्टिट्यूट फोरान टोरोस ने उनकी जीत के हीरो बने, जिन्होंने अतिरिक्त समय में मैच का निर्णायक गोल करते हुए टीम को 2010 के बाद उसका दूसरा खिताब जिताया।
1: In 2026, the champions of the world are Spain. Viva España! The best team has won it, and the best player the world has ever known leaves in tears. This time the party belongs to someone else. This is a Spanish summer night.
2: न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा विश्व कप के फाइनल मुकाबले में तनाव और रोमांच अपने शिखर पर नजर आया। इस कड़े मुकाबले के निर्धारित 90वें मिनट बिना किसी गोल के खत्म होने के बाद टोरेस ने आखिरकार 106वें मिनट में मुकाबले का एकमात्र गोल दागा। इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने निको विलियम्स के हेडर से मिली गेंद को नियंत्रित किया और फिर बाएं पैर से जोरदार शॉट लगाकर अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज से बचाते हुए एक बेहतरीन गोल किया।
1: And thundered in for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last! Spain's magic moment!
2: इसी के साथ स्पेन की टीम ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। स्पेन ने लंबे समय तक बॉल पर अपना कब्जा बनाए रखा और पूरे फाइनल में बेहतर मौके बनाए, लेकिन अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने बार बार स्पेनिश टीम के हमलों को नाकाम किया। वहीं अर्जेंटीना साफ सुथरे मौके बनाने के लिए संघर्ष करती नजर आई और कप्तान लियोनेल मेसी को स्पेन के अनुशासित डिफेंस ने काफी हद तक रोके रखा। मौजूदा चैंपियन को नॉर्मल टाइम के स्टॉपेज टाइम में बड़ा झटका लगा। मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस को दूसरा येलो कार्ड दिखाया गया, जिससे एक्स्ट्रा टाइम के लिए अर्जेंटीना की टीम में 10 खिलाड़ी रह गए। मुकाबले में 106वें मिनट में आए टोरेस के गोल के बाद स्पेन ने दबाव बनाना जारी रखा। इस बीच टीम को लगा कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में अपनी बढ़त दोगुनी कर ली है, लेकिन गोल से पहले फाउल होने के कारण उस प्रयास को अमान्य करार दिया गया। हालांकि लुइस डे ला फुएंते की टीम ने संयम बनाए रखा और आसानी से मैच के आखिरी पलों को बिताते हुए अर्जेंटीना के विश्व चैंपियन के दौर को खत्म कर दिया। ये जीत स्पेन के लिए एक शानदार टूर्नामेंट का समापन थी। ये टीम पूरे टूर्नामेंट में अजय रही और साल 2010 की अपनी ऐतिहासिक सफलता के बाद दूसरा वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया। फरहत नाज, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो स्पेन एक ऐसी टीम बनकर उभरी जिसने अपने मजबूत डिफेंस को अपनी ताकत बनाया। विश्व कप के 8 मुकाबलों में महज एक गोल खाते हुए ये टीम फुटबॉल की नई विश्व विजेता बन गई है। मैदान पर तनाव दिखा दोनों टीमों के बीच, दोनों टीम के फैंस के बीच, लेकिन रोमांच का मीटर हमेशा हाई ही नजर आया। स्पेन के मिडफील्डर रॉड्री फीफा

0: कप 2026 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने और उन्हें गोल्डन बॉल हासिल हुई, जबकि फ्रांस के किलियान एम्बापे ने लगातार दूसरी बार गोल्डन बूट अपने नाम करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। तो आइए सुनते हैं अपने खेल से मैदान पर करिश्मा दिखाने वाले इन दोनों खिलाड़ियों पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
1: स्पेन के मिडफील्डर रॉड्री को पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार खेल के लिए विश्व कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। रॉड्री फीफा विश्व कप 2026 की गोल्डन बॉल अपने नाम करने में सफल रहे। ये पुरस्कार पूरे टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को दिया जाता है। रॉड्री ने स्पेन के लिए सभी 8 मैच खेले और सबसे अधिक सफल पास किए, सबसे अधिक दूरी तय की और खेल में सबसे ज्यादा बार गेंद को छुआ। उनकी सटीक पासिंग, डिफेंस और अटैक के बीच बेहतरीन तालमेल ने स्पेन की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। फाइनल में रॉड्री ने 105 में से 101 पास सही किए, 80% ड्यूल्स जीते और 2 गोल करने के मौके बनाए। पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपने डिफेंडर्स की मदद करने में उनकी समझदारी भरी भूमिका के कारण ही स्पेन ने 8 मैचों में सिर्फ 1 गोल खाया। वे फुटबॉल इतिहास में विश्व कप, UEFA चैंपियंस लीग और बेलन डी'ओर जीतने वाले 11वें खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाले फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे ने गोल्डन बूट अपने नाम किया। एम्बापे ने इस विश्व कप में 10 गोल और 4 असिस्ट किए। एम्बापे ने लगातार दूसरे विश्व कप में गोल्डन बूट जीतने के साथ ही इतिहास रच दिया। वे ये कारनामा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी 8 गोल के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। तीसरे स्थान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में फ्रांस के कप्तान एम्बापे 2 गोल करने के साथ ही मेसी से आगे निकल गए थे। फीफा विश्व कप के इतिहास में भी सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड एम्बापे के नाम ही दर्ज हो गया है। वे इस मेगा इवेंट में कुल 22 गोल कर चुके हैं, जबकि स्टार खिलाड़ी मेसी 21 गोल के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कल दुनिया ने देखा इन नए सितारों को उभरते हुए और अब फुटबॉल के बाद रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का। इंग्लैंड ने भारत को कल लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर तीसरे एक दिवसीय और निर्णायक मुकाबले में 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। इस हाई स्कोरिंग मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट गंवाकर 387 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी। और इस मैच पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष। पूरा मुकाबला एक हाई स्कोरिंग मैच रहा, कोशिश भारत ने आखिरी हद तक की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। कृपया एक पूरे मैच के इस स्कोर कार्ड पर नजर डालें।
2: जी शक्ति, जब इंग्लैंड बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो उन्होंने शुरुआत से ही भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसमें अहम भूमिका निभाई उनके ओपनर बेन डकेट और जेकब बेथल ने। बची खुची कसर वहां जो रूट ने आकर पूरी कर दी जब उन्होंने 48 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली और अंतिम ओवरों में जॉस बटलर ने 13 गेंदों पर 41 रन की विस्फोटक पारी खेलकर इंग्लैंड को एक विशालकाय लक्ष्य तक पहुंचा दिया। जवाब में भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर काफी निगाहें थी। भारत का टॉप ऑर्डर जो है उसमें रोहित शर्मा के ऊपर काफी सवाल उठ रहे थे कि वो किस तरीके से खेलेंगे, क्या उनका बैटिंग अप्रोच होगा, लेकिन उन्होंने सभी अपने आलोचकों के मुंह बंद करते हुए 110 गेंदों पर 138 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने 77 और विराट कोहली ने 74 रनों की पारी खेली। मिडिल ऑर्डर जो है भारत का वो फेल होता नजर आया और भारत को कोलैप्स का सामना करना पड़ा और 27 रन से हार मिली भारत को। जेकब बेथल जो रहे उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला जिन्होंने 91 रन की पारी खेली और रोहित शर्मा का विकेट झटका था।
0: जी बिल्कुल, आपने रोहित शर्मा की बात की, ये सुनते हैं कि रोहित शर्मा ने श्रृंखला में टीम के प्रदर्शन के बारे में क्या कहा।
3: Little disappointed with the result because I thought we were playing really good cricket. You know how we started in Birmingham, we played some really good cricket. We fell a little short at Cardiff with the bat, actually not enough score on the board. And then here again there was a massive total to chase. We tried everything we could with the bat, but again fell 20-25 runs short with the bat.
0: रोहित की जो कल की पारी थी वो 137 रन की, आपने बात की, विव रिचर्ड्स के रिकॉर्ड की बराबरी और लॉर्ड्स के मैदान पर दूसरा सबसे बड़ा एक दिवसीय स्कोर, पहला भी कल ही बना जो इंग्लैंड के खिलाड़ी के बल्ले से आया। लंबे समय से कई अटकलें थी, कई सवाल थे, कितना सार्थक उनकी इस पारी ने जवाब दिया है उन सवालों का।
2: देखिए एक बात तो तय है कि रोहित ने अपने बल्ले से जवाब दिया है, उन्होंने इस पारी में अपने 17 चौके और 5 छक्के लगाए। जब वो बल्लेबाजी करने के लिए कल मैदान पर उतरे तो उनकी बैटिंग में एक अलग किस्म का कंट्रोल नजर आ रहा था, उन्होंने अपने जो शॉट्स हैं वो इधर उधर नहीं मारे और सीधे बल्ले से खेलकर गेंद को बेहतर तरीके से बाउंड्री के पार पहुंचाया। और जो रोहित शर्मा रहे उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया कि विजिटिंग कंट्रीज में उन्होंने सबसे ज्यादा शतक बना लिए हैं इंग्लैंड

0: में उनके 8 शतक हो चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था जो यूएई में उन्होंने बनाए थे। इसके अलावा रोहित शर्मा जो है सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं किस ओपनर बल्लेबाज के तौर पर। अभी डेविड वार्नर से वो पीछे हैं जिन्होंने 49 शतक लगाए हैं।
1: जी बिल्कुल, और रोहित शर्मा ने खुद अपनी पारी के बारे में क्या कहा, इंग्लैंड की धरती पर उन्हें खेलना कितना पसंद है, आइए उनके मुंह से सुनते हैं।
2: I love playing in England. There's no doubt about it. The atmosphere, ground, the pitches. You know, when you turn up here to play any sort of format, it challenges you in different ways. That's what, as a cricketer, you want to be challenged all the time. I had my time in the middle.

0: ऑफ द टाइम आई वाज ऑन द नॉन स्ट्राइकर एंड वाचिंग देम. हमारी जो बातचीत थी मोस्टली ये हो रही थी, अगर विकेट हाथ में रखेंगे तो ही चांस बनेगा इतने बड़े स्कोर को चेस करने का. पावर प्ले में हम बात कर रहे थे कि मारने के लिए जाएं ना जाएं, बट देखा कि नई बॉल से मारना उतना इजी नहीं है. एंड आई थिंक जैसे उन्होंने अपनी इनिंग पेस की और फिर जैसे एक्सेलरेट किया, आई थिंक जब वो 60-70 के पास पहुंचे तो बहुत ही शानदार.
1: हालांकि लक्ष्य इतना बड़ा था कि आप कितने भी रन स्कोर बोर्ड पर बनाते जाइए, आपके लिए जो नीड्स वाला कॉलम है, जो और बनाने वाला कॉलम है, वो हमेशा उससे बड़ा नज़र आता है. जिस तरह की ये पूरा दौरा भारत के लिए गुजरा, पहले आयरलैंड से 2-0 की हार, फिर इंग्लैंड से T20 श्रृंखला में हार, कुछ पॉजिटिव क्या भारतीय टीम अपनी 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों में यहां से लेकर के आ पाई है?
2: शक्ति, 2027 की तैयारियों की बात करें अगर तो भारत का जो टॉप ऑर्डर है वो पूरी तरह से फॉर्म में आ गया है. रोहित शर्मा और विराट कोहली की फिटनेस, कमिटमेंट और फॉर्म पर जो चर्चा हो रही थी वो लगभग अब खत्म हो चुकी है. भारत की कई कमियां भी सामने आई हैं जिसके चलते अब भारत की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि उनको किन किन चीज़ों पर काम करना है. जैसे मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स जो है वो लगातार हो रहा है, 4-5-6 नंबर में बदलाव किए जा रहे हैं जिससे एक दृढ़ता नज़र नहीं आ रही है. बुमराह के अलावा भी टीम को कुछ एक्सपीरियंस बॉलर्स की जरूरत है जिसके चलते वो एक प्रेशर बना पाए सामने वाली टीम पर और स्पिन पर और भरोसा जो है जताना होगा.
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि काफी कुछ सीख लेके ये युवा टीम जो है, एक कॉम्बिनेशन है युवा और एक्सपीरियंस टीम का, वो आगे बढ़ेगा और अपनी तैयारियों को और धार देता हुआ नजर आएगा. और अब रुक करते हैं शूटिंग रेंज का. भारत ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन के लिए 36 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. आज से 29 जुलाई तक चीन के हांगजाऊ में चलने वाली इस प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे.
3: भारतीय दल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल शामिल हैं, जबकि महिलाओं में आशी चौकसे, विदर्शा के विनोद और सिप्त कौर सामरा हिस्सा लेंगी. महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि, संयम और ईशा सिंह तथा पुरुषों में केदार लिंग बी, उचाग नवे, कमलजीत और आकाश भारद्वाज शामिल हैं. महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल टीम में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत तथा पुरुषों में अनीश भनवाला, ओंकार सिंह और भावेश शेखावत को चुना गया है. शॉटगन इवेंट्स में उदावीर सिंह जाजी, भवनीश मेंदिरत्ता और विवान कपूर पुरुषों के ट्रैप इवेंट में हिस्सा लेंगे. महिलाओं में प्रगति दुबे, कीर्ति गुप्ता और राजेश्वरी कुमारी हिस्सा लेंगे. पुरुषों के स्कीट टीम में गुरजोत सिंह खंगुरा, परमपाल सिंह गुरोन और अभय सिंह सेखो शामिल हैं, जबकि गनिमत सेखो, दर्शना राठौर और यशस्वी राठौर महिलाओं की टीम का हिस्सा हैं. पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लो, शाहू तुषार माने और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल. वहीं महिलाओं में इला वैनिल, वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और साक्षी सुनील पडेकर भाग लेंगे. इसके अलावा भारत 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम और ट्रैप मिक्स टीम इवेंट्स में भी टीम उतारेगा. करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन.
1: और अब रुक करते हैं बैडमिंटन कोर्ट का, जहां जापान ओपन में जीत हासिल करने के बाद पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करती नजर आएंगी. महिला सिंगल्स में देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा भी भारतीय दल का हिस्सा हैं और उन्नति हुड्डा कल पीवी सिंधु से ही अपना पहला राउंड ऑफ 32 का मैच खेलने उतरेंगी. वहीं पुरुष सिंगल्स की बात की जाए तो वहां पर लक्ष्य सेन, युवा आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम में हैं. पुरुष डबल्स में सबकी नजर MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन पर होने वाली है, क्योंकि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी जो है उसको जापान ओपन के बीच में ही कुछ चोट के कारण हटना पड़ा था. और अपनी ऐतिहासिक जीत पर पीवी सिंधु ने खुशी भी व्यक्त की है कि वो आगे इसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए नजर आएंगी. और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का. कल इसी समय स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की सभी खबरों के साथ. आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें आप sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं. तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार.
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी, कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनोव में स्टेफान सेल मारिसिस फेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
3: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों

0: देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्डोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
1: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

0: स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
1: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना, कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग, कल संध्या 7:10 पर कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता और कल रात्रि 8 कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। तो श्रोता, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण। इसी के साथ आज का प्रसारण अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आपकी सेवा में कल दोपहर 2 पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रसारण सहायिका श्रीमती संगीत सोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री कामयांग फॉल्स।